राजस्थानी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उषा अत्रे के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये भक्ति रचना शाहिर साबड़े और सहकारियों के स्वर में।

शाहिर साबड़े और सहकारियों के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना उर्वशी शाह के स्वर में।

उर्वशी शाह ने गई संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल और सिंधुरा काफी.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी सबीना मुमताज इस्लाम। सबीना मुमताज इस्लाम अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रही हैं सिंदूरा काफी ठुमरी। तो आइए सुनते हैं सिंदूरा काफी ठुमरी, कलाकार सबीना मुमताज इस्लाम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये सिंदूरा काफी ठुमरी सुन रहे थे। आज की कलाकार थी सबीना मुमताज इस्लाम। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर रॉय चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे चित्तरंजन दोलुई। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। आज ही कलाकार हैं रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन। कलाकार रागेश्री दास।
1: You were listening to Khayal in Raag Jaunpuri, followed by Thumri Sindura Kafi. Our artist was Sabina Mumtaz Islam. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary, and on the harmonium was Chittaranjan Doloi. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present Khayal in Raag Nat Bhairav. Our artist is Rageshri Das. Accompanying her is Pinaki Chakraborty on the tabla and Sanathan Goswami on the harmonium. Listen now to Khayal in Raag Nat Bhairav by Rageshri Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी रागेश्री दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू खयाल इन राग नट भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज रागेश्री दास अकंपनिंग।

शुभ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम, 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंडित राम नारायण के सारंगी वादन से। आपने प्रस्तुत किया है राग मारुबिहाग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग मारुबिहाग।

शो हम सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन राग था मारू बिहाग। मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन राग रागेशित। विलंबित गत जप ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन राग रागेश्री।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया हुआ राग रागेश्री। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Sunira Kasliwal. She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmed Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen taal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है सानिया पाटनकर। आपने प्रस्तुतिया राग ललत गौरी सुनते हैं। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है प्रीतम सैया दरस दिखाजा और द्रुत तीन ताल में सुनते हैं सरगम। सात संगत कला श्रीकांत भावे और हारमोनियम शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग ललत गौरी, कलाकार सानिया पाटनकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सानिया पाटनकर द्वारा प्रस्तुत राग ललितपुरी। आपके साथ तबले पर थे श्रीकांत भावे, हारमोनियम पर थी शुभांगी भवसार। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सानिया पाटनकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरागी तोड़ी। लंबी छपताल में निबद्ध रचना के बोल है धरले ध्यान गुरुजन का, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है लगन लागी तुमसो और सरगम। सत्संगत तबला सचिन राजोपाध्याय और हारमोनियम उपेन्द्र सह।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राग बैरागी तोड़ी, करती सानिया पाटणकर। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन सुनेंगे. कलाकार हैं साकेत साहू. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनिरुद्ध मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है साकेत साहू का राग बागेश्वरी पर वायलिन वादन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्वरी. आवर आर्टिस्ट इज साकेत साहू. Accompanying our artist on the tabla is Aniruddha Mukhopadhyay. Listen now to the violin in the rag Bageshri. Our artist, Saket Sahu.

0: अभी आप राग भाग्यश्री पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे साकेत साहू। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको झपताल पर तबला वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाखा मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है झपताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गौरी शंकर कर्मकार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वॉज साकेत साहू। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime, Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Jhaptal. Our artist is Gauri Shankar Kormakar. Accompanying him on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay. Listen now to the tabla in Jhaptal. Our artist, Gauri Shankar Kormakar.

0: अभी आप झपताल पर गौरी शंकर कर्मकार से तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाखा मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Gauri Shankar Karmakar. Accompanying him on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई ठुमरी मिश्र झिंझोटी राग में। साथ संगत है हारमोनियम पर अरविंद थत्ते, तबले पर चंद्रकांत कामत, सारंगी पर लतीफ अहमद खान। आइए सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई मिश्र झिंझोटी राग में ठुमरी।

अभी अपने पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की मिश्र झिंझोटी राग में ठुमरी सुनी। सात संगत की थी हारमोनियम पर अरविंद थत्ते, तबले पर चंद्रकांत कामत, सारंगी पर लतीफ अहमद खान। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर की गाई ठुमरी राग जोगिया में, बोल है पिया के मिलन की आस।

अभी आपने विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर की गाई ठुमरी सुनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी। बोल है कैसे बंसी बजाई रामा सुध विसराई। तबले पर साथ कर रहे हैं नाना मुड़े। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर।

श्रोताओं, अभी अपने विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी सुनी। अब सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी। बोल है, रस के भरे तोरे नैना सावरिया, तबले पर साथ कर रहे नाना मुड़े, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वाला बलकर।

अभी अपने पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी सुनी। तबले पर साथ की थी नाना मुड़े ने, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है अंजनी कुमार मिश्र का गाया शास्त्रीय गायन. आप सबसे पहले राग शुद्ध सारंग प्रस्तुत करेंगे. विलंबित ख्याल के बोल है मेरो मन हरो जो कि एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत ख्याल के बोल है विनती करत मैं तो हारी जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ हारमोनियो पर है इलियास खां और तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का गाया राग शुद्ध सारंग। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग यवन। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और बोल है माई मोतियन करूंगी। द्रुत ख्याल जो कि तीन ताल में निबद्ध है, बोल है भवन न भावे रे रैन दिन श्याम। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे प्रमोद कुमार मिश्र और हारमोनियम पर है इलियास खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अंजनी कुमार मिश्र का गाया राग यमन। आइए अब सुनते हैं रुनाडे का गाया राग सरस्वती कल्याण। आप द्रुत ख्याल प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल है तेरो ही नाम रटत। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ठाकुर प्रसाद मिश्र और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं इलियास खा।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रूना डे का गाया राग सरस्वती कल्याण। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Ustad Gulam Sadiq Khan. First listen to Rag Bairagi. The Vilam Gat is set to Ektal. The words are Kaj More Banave and Drut Gat is set to Teental. He is accompanied by Nawab Ali Khan on Tabla and Sajjad Ahmed on Harmonium.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मेघ। मद झपताल में निबद्ध है, बोल हैं गर्जे घटा घन। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बैरागी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। नाउ लिसन टू राग मेघ। द मदले गत इज सेड टू झपताल। The words are Gharje Ghata Ghan.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम अली खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल नरेशन इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खान। ही वाज अकंपनीड बाय नवाब अली खां ऑन तबला एंड सज्जाद अहमद ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अपनी माँ पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। ये अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये

अंधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं एक सिंध भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।